अगर असी बहुता अच्छा ना भी बोलदे होइए तां भी जदों असी सत्संग विच जुड़ के प्रभु परमेश्वर दे गीत गाउंदे हां, प्रभु दे चरना कमलां विच जुड़ के अरदासां करदे हां, बेनतियां करदे हां, तदों असी सारे ही अच्छा और शुभ बोलदे हां। पर क्योंकि साडा तन करके तां सत्संग विच जुड़ना हुंदा ही है, पर मन करके असी कदी कदी जुड़दे हां। एहो ही कारण है कि मालक दी दरगाह विच साडियां कीतियां हुईयां सारियां अरदासां बेनतियां कबूल नहीं हुंदियां। पर गुरबाणी गवाह है कि बाबा नानक गुरुदेव नानक अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले, जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते, ओ तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच परवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगह परवान, क्योंकि गुरु ते परमेश्वर दे विच कोई अपेदता नहीं, गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। सो गुरु नानक देव जी दा बोलिया होया सदा ही परवान होया, और मेहरवान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन जाता है, दास दी लाज सदा ही मेहरवान रखता है, और उसका बोलिया होया हमेशा ही मालिक दी दरगाह दे विच कबूल हुंदा है। सतगुरु फरमान करते हैं।

अमृत की है। अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजे। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलिया युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, वो अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरु

एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वट है। एक बारी देवतिया ने विचार की थी। देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदू मिलेगा जदू आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया। एक पासिओं उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासिओं दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी। देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया। जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा। ओ जहर शिवजी भगवान नूं पीण वास्ते बेनती कीती गई। ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता। उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया। इस करके शिवजी भगवान नूं लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे। जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां। लक्ष्मी नूं विष्णु भगवान जी ने अपना लिया। पारजात दरखत नूं इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया। जिथे अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

त्रेता बीत गया, द्वापर युग आया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैन जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

कीर्तन करन वाला। तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार, मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उहदा कीर्तन करन वाला, पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने कम उस

गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब, गुरु हरगोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदू होए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल

पहले जन्म दा नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन, मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं। एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस, मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले।

पंडितां दी प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जेड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जेड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ते सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खादा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवीं तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ओ पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन ओ ते जिउंदे ने इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हाथां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे

प्यार कर रहे ने। इन्हे नु सारी संगत मथा टेकन लग पई। कौन आया? गुरु साहिबां दे महल माता साहिब देवा। गुरु साहिबां दे कोल आके खड़े हो गए। झोली अगे कीती। झोले विच पतासे ने। ओ पतासे बाटे विच पा दिते ते मुस्कुरांदे होया आखिया, पातशाह मेरा हिस्सा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, हां साहिब देवा तुहाडा भी हिस्सा। मैं अमृत तैयार कर रहा सा मुरदिया विच नवी रूह फूकन वास्ते। जात पात ऊंच नीच खत्म करके एक नवा समाज बनाने वास्ते। पर तुसा इस अमृत विच प्यार मिठास सहनशीलता भुल दिती। हुण जदों कोई अमृत छकेगा, जे चरखनिया ते चढ़ेगा तां वी बाणी पढ़ेगा। जे किसे दी खोपरी लाई जाएगी तां वी उह बाणी पढ़ेगा। जे किसे दा बंद बंद कटिया जाएगा तां वी उह बाणी पढ़ेगा। अमृत तैयार हो गया। अमृत तैयार करके जिन्हें पहला सिर दिता सी दया राम ने, ओदे सामने खड़े होए। एक अमृत का चुल्ला दया राम नूं दिता। पीण दा इशारा कीता। दया राम ने अमृत का चुल्ला जदों पीता, एक नवी बोली दिती। ते गुरु साहिबां ने कहा, कहो दया राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ते हुण पंजां दे नाम भी बदली हो गए। दया हुण दया सिंह हो गया। ते तुसी हुण शेर हो। ते जिहड़ा शेर है ओह कदी डरदा नहीं। हुण तुसां जुलम दा मुकाबला करना है, जुलम खत्म करना है, गरीबां दी मजलूमां दी रखिया करनी। जदों पंजां ने अमृत छकिया ते हुण पंजां दे मनां दी अवस्था इह हो गई। बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाले मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हथां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असां सिर दे के अमृत लिए, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहिबां ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका। मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया ने गुरु साहिबां नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहिबां दा नाम भी बदली हो गया। गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह ते दूर सारियों एक साध उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे गुरु बनिया ते आपे चेला बनिया। एक नवा राह दुनिया नूं दिता। यह जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा है ते चेला हमेशा चेला। कहन लगे नहीं, जदों खालसा साजे आ फिर कहा कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच

होनिक विचार है के गुरु साहबा ने उन्हां पंजां नूं नाम दिते दया राम नूं दया सिंह सिंह नाम उदों दिता जदों उन्हां अमृत छके ते जे कोई बगैर अमृत छके सिख परिवार विच जन्म लै के अपने नाम दे नाल सिंह लफज लांदा है उह सिंह लफज माता पिता दा दिता हो सकदा है गुरु वालों सिंह लफज उदों मिलेगा जदों आपां अमृत छकां गुरु ने किन्नी कृपा की ना समुंदर रिड़कण दी लोड़ है ना अवतार बनन दी ते गुरु नानक वर्गा कोई हो नहीं सकदा कि जिन्हों सचखंड अकाल पुरख बुला के अमृत प्यावे किन्नी कृपा की रहत बैत वाले पांच सिंघां कोल जाओ बेनती करो वो अमृत तैयार करके पाई तुहानू छका देणगे तो जिन्हें अमृत नहीं छकिया सिख परिवार विच जन्म लैके उहदा जीवन किसे लेखे नहीं अमृत जिहड़ा छक लैंदा है उहदी कोई जात नहीं अगर एक चमार भी अमृत छक लवे रहत विच रवे तो गुरु साहिब जी कहिंदे ने ओह फिर चमार नहीं।

दिना विची सिखाने शंकरगढ़ मिचनी बालासार ते पिशौर दे किलिया नू जित लिया। सिख राज दिया हद्दा काबल वालू वदल लगिया। चार चुफेरे सरदार हरि सिंह नलुए दी बहादुरी दिया तुम्मा पै गईया। नव्या किलिया नू जित पुराणिया दी मुरम्मत कराई। पठाणा विच हलचल मच गई। ते फिर एक रोज सरदार हरि सिंह ने हल्ला बोल दर्रा खैबर दे बूहे जमरौद दे किले उत्ते केसरी झंडा जा चलाया।

जमरौत दी जंग विच सिखां ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलुए दियां गल्लां होण लगियां। नलुए तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे पड़दादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया रोक दिया, बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंह

आज गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नु तारदे होए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोक कर्म कांडा विच पए होए। एक पंडित सूरज वल मुंह करके ते गंगा जल पाई जाऊंगा, ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वल करके पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सतसंग बोलो श्री जी। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है तुसी जल उस पासे पा रहे हो। तुसी जल उस पासे क्यों पा रहे हो? तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच, मैं उना नू पानी पा रहे खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है? आख्या कोई 400-500 मील होना इत्थों। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी वो खेतों तक पहुंच जाएगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकता है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकता? पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पवोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिखत बोलो श्री जी। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना ये सारिया सिफरां हन, सिफरां ये सारे जीरो हन और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते 10 बन जाएगा, 2 जीरो पावेगा 100, 3 पावेगा 1000। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन जप तप हन बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणे। सत सिखत बोलो श्री जी। जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, मैं अनेक कर्म करके वेख ले हन लेकिन एक प्रभु दे सिमरन तो बिना इस जी दे नाल किसे ने नहीं जाना। सत सिखत बोलो श्री जी। जदों ऐसा सच दा उपदेश पंडित जी नु दिता बहुत संगत उथे आके गुरु नानक दे दर्शना ते जुड़ गई ते उस संगत विच एक छोटी जी 10-12 साल दी एक बच्ची भी सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या पंडित जी इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कितने श्वास हैं बाकी कितने नहीं, आ भरोसा ता एक पल दा भी नहीं, इतना भी भरोसा नहीं कि जेड़ा श्वास असी छड़े है पता नहीं ओ वापस आउंदा के नहीं आउंदा। सत सिखत बोलो श्री जी। इस वास्ते नहीं भरोसा इस जीने दा, ऐसा सच दा उपदेश जदो उस बच्ची ने सुनिया कि इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरणा दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए, कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया
कि मैं किस वास्ते संसार से आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच का उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्ते संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है। ए उपदेश जदों सुनिया ए बच्ची भी एक उपदेश पल्ले बन के बह गई और गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नूं तारदे हुए अगे निकल पए।

हे करुणा निदान, हे पतत पावन, कृपा निदान जगत गुरु, तेरे तो बिना मैनु कोई आसरा नहीं। किस ही

0: पौड़ी किता अंदर सब को विख नदरी हेट चलाए दा आपे दे विड़े आई आपे ही कर्म कराए दा
1: वड़ा वड़ा वट मेदनी सिरे सिर धन लाए लाए दा नदर पठी जे करे सुल्ताना भाव कराए दा धर्मंगत देखना पाए दा।
2: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा है मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजलि देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

ते राय सोचन लग्या के कितना समा पाके कालू जी दे घर माता त्रिपता दे घर आ लाल पैदा होया सी, लेकिन आज लगदा है कि सब ने इस नु डस लिया। आ वही जाके कोई खबर करो।

आए उस ब्रिख हेठां आ के बह गए जिथे सब तो पहला गुरु नानक दे दर्शन कीते सन। राय जी आ बन दे पत्ते पत्ते कोलो पुछदा है किते कोई गुरु नानक दा सुनेहा तो नहीं आया भाई। ते फिर राय जी दे नाल राय दा नौकर सी उमेदा, आख्या उमेदिया तू गुरु नानक दे घर जा पता कर कोई सुख सुनेहा आया गुरु।

0: कुंभ ना हो, ज्ञान का बतावन रहे गुरुबिन ज्ञान हो, ओ गुरुबिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी अस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है,
2: आसरा उसका आधार था, मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं, थोड़े को हजारे यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इको ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी,
4: कागो हंस करे।
2: कागो हंस करे, कागो हंस करे, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्हां नूं हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानूं उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल लई तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी, असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

0: जो सिर साईं ना निभे सो सिर कपल उतार, जो सिर साईं ना निभे सो सिर की देखाए, उन्ने बैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे थाए।
1: साहब जी की गल है भैन, तुसी ने क्या दिता?
2: असी किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
1: की पूछना सी?
2: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता, पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना तरम ना तमड़ा।
1: ओ चलिए भैने, मैं कोई कम कमाइया लई तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन नूं आई हां संगतां दी सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहे हैं।
2: फिर भी तुहाडियां लोड़ां?
1: मेरिया लोड़ां? मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है, तो होर मैनूं चाहिदा वी की? जो कुछ मैनूं लोग दे जांदे ने जाके गुरु के दरबार च चढ़ा दिना, दिन वेले बेड़ी चलाना ते राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थले ते सौ जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नाही।
2: तन हो तुसी?
1: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जिहड़ा सब नूं अपनी मिठी बाणी दा अमृत पिलांदा है। ओहदे दर ते जाओगे तो उहनूं कहना जिन्ने सानू यह सागर पार कराया, उस औगन हारे नूं इस पाव सागर तो पार उतारो।